परवाह नाही किसे केरी, बाज सच्चे नाहा। दरवाट उपर खर्च मंगा, जब्बे दता खाए।

0: पौड़ी बड़ी हमडा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक न जपन करतबा जी अंदर जियो सब जाला सब तेरे वस तेरा कर पला तेरा कर आनंद वधाई तुद कर माण मत दे जे अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दाई दाया केले सगल जगत, जगत।

0: गए मशक्कत काल, नानक ते मुखी उजले किते छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद ना, सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए, सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद चक्र चिहन अर भरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत किह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गण जय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत अंत न पावत देव सब मोन इंद्र महाशिव जोग करी फुन वेद बिरंच विचार रहियो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जगतारन कौ गुर ज्योत अर्जुन माहे तरी काल आए कुत्ते मोही खाज हुआ मुरदार गुसाई राजे पाप कमाव दे उल्टी वाड़ खेत कौ खाई आन काए रातड़िया वाट दोहेली राम पाप कमाव दिया तेरा कोए न बेली राम जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कान ना की जय गगन दमामा बजयो परयो निशान काओ खेत जो मांड

सूरमा अब जूझन कौदाओ सूरा सो पहचानिए जो लर दीन के हेत पुरजा कट मर कबहू न छड खेत लिख कत है न छूटी खेन खिन भूलन हार बखसन हार बखसल नानक पार उतार सुकह टल गुर सेवियहनिस सहज सो भाए दर्शन परस आय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अर सहों कुरसों चटिया तुद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सचा पातशाहो सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला सब रखे कुटुंब नाल कारज आप सवार आना सो प्रभ सदा सभाल कलाई कीतियाना सब रखे कुटुंब नाल कारज आप सवार आना सो प्रभ सदा सभाल प्रभ मात पिता कंठ लाइंदा लौड़े बाल कपाल दयाल होए सब जी अजंत्र हर नानक नदर निहाल महला पंजवा वेण तुद होर जे मंगना सिर दुखा का दुख
देह नाम संतोखिया उत्तर मन की भुख

जिस कृपा करे सो पूरा प्रधान, जिसनो बल तरे जिस है जराए आप, सोए अजर जरे तिस ही मिलया सच मंत्र गुर मन तरे। जिस है जराए आप, सोई अजर जरे तिस ही मिलया सच

तन जियो तेह को जग में, तन जियो तेह को जग में, मुखते हर चित में जुद विचार।

सेवा गाखड़ी सिर दी जय आप गवाई सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दी जय आप गवाई।

0: अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दासन दास तुदया गए बिन वतास लो।
1: पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दई दया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदू।

प्राणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां

रंग अनेक न जपन करतबा तियांद्र जियों सबके जनला सब तेरा वस तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाई तुत कर मार महत्ता ते जपना सरकला भरपूर।

माता थर्त महत दिवस रात दोए दाई दया केले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक ना जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ। सब तोहे बखाने ओ दोहरा।

व्यास गोविंद दास तोहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती। मान वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया। सबदो ता गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा घर ता तेरा सब किछ है। जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडे आईया। कहे नानक सुनहो संतहो शब्द धरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख हुआ

ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोका।

डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तौ जरे मरे सिद्ध पाईया लीनो हाथ संधौरा गगन दमामा बाजेओ परेओ नीसान काओ खेत जो मांडेओ सूरमा अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिया जो लारा दीन के हेता पुरजा काट मारा कब हूँ ना छाड़ खेत जब बाण लागे ओ तब रोस जागे ओ करंग लय कमाणंग अनंग बाण तानंग कबीर मोहे मरने का चाओ है मराओ ता हर कै द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर साहा पाते साह निहचल चौर छत डिठे सबे थाव नहीं तुद जेहया बद्दो हो पुरख विदाता ता तू सोहया वसदी सगने अपार अनूप राम दास पुर हर हां नानक कसमल जाहे नाया रामदास सार एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहो कुरसहो चटिया।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजा बचने तोर मोर मन मन जान का पूरन दीजा हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजा बचने तोर मोर मन मन जान का पूरन दीजा हौ बल बल जा।

0: तेरा मर्तबा, रंग बरंगे नेक न जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरे वास तेरा घर पला, तेरे घर आनंद वधाई तुद घर, मान महता ते जे अपना आप जर, सर्ब कला परपूर्ण संजत कता, नानक दास दास बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगे आईया बुरे आईया।

0: पनते कब हूँ ना टरो।
1: हमे आव गुण परि एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सोत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलांत जाम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। सो कहौ टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाई। दर्शन

जन्म मरण दुख जाई, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसह कुर सहौ चटिया, तुद डिठी सच्ची पात सा, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहा दैसाहु, जिस पास बैठे आसूही है, सब ना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहा दैसाहु, जिस पास बैठे आसूही है, सब ना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तन्ना गोपाल तेरा आरता, जो जान तुमरी भगत करन्ते, तिनके काज सवारता, गोपाल तेरा आरता, जो जान तुमरी भगत करन्ते, तिनके काज सवारता, रहाओ दाल सीधा मांगो कीयो, हमरा खुशी करे नित जीयो, पनिया शादन निका, अनाज मंगाओ सत सीका, गऊ भैंस मंगाओ लावेरी,

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

पौड़ी आपने आप साजे आपने रचो नाओ दुई कुदरत साजे करिया संडिठो चाओ दाता करताब तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दे लै सजिंद कवाओ करिया संडिठो चाओ करिया सुन डिठो।

0: जन नानक सदगुरु मिल हर।
1: श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चा तुदे अख करोड़ सच्चा सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला।
0: वडी वड्याई जा वड्डा नाम वडी वड्याई जा सच न्याओ वडी वड्याई जा ने चल थाओ वडी वड्याई जाने लाओ वडी वड्याई बुझे सब पाओ वडी वड्याई जा।

भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद पौण विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद सालाह विस्माद उज्जड़ विस्माद राहा

सुटे प्राण लख सुरती लग ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखया आवण जान नानक मति मिथ्या कर्म सचा निशान पौड़ी।

0: और हमें चखना चाक महला पहला।
1: लिख लिख पड़े अति तकड़िया बहुत ही तो पवे अति तो लवे बहु फेकिया दे दुख दिया सहवे जी अपना किया।

0: खार, कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता, किस नाल कीते दोस्ती सब जग चलनहार। कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर, नानक वखाने बेनती तुद बार, कूड़ो कूड़ महला पहला
1: सच ता पर।

ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यों लोग प्रगासै, देखत दरस भटक परम भजत, दुख पर हर सुख सहज बिगासै। सेवक सिख सदायत लुभत, आलस मुह ज्यों कुसुम सुभासै। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो।

तीन पवन परपुरो सोई, आपन सरस कियो ना जगत कोई, आपने आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गंधर्व खोजंत फिरे, अविनाशी अचल अजूनी संभो पुरखोत्तम अपार परे, करण कारण समरत सदा सोई, सर्व जी मन ते आयो, श्री गुर रामदास, जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो, सतगुर नानक भगत करी इक मन, तन मन तन गोबिंदियो, अंगद अनंत मूरत निज तारी, अगम ज्ञान रस रस्यो हियो, गुर अमरदास करतार कियो वस, वाहो वाहो करते आयो, श्री गुर रामदास, जय ओ जय जग में ते

0: नारद तू प्रहलाद सुदामा पुप भगत हर के जोगन अम्बरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पनंग तिनको अवतार पयो कल्पेंतर जस जगतर पर छायो सिर गुरु रामदास जयो जय जग मह तै हर परम पद पायो सिर गुरु रामदास जयो जय जग मह तै हर परम पद पायो।
1: मनसा कार सिमर अंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो झूतनंग बाचा कर समरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो झूखणंग कर्म कर तो दर्स परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो।
2: जे सतगुर सिमरंत नायन के तिमर मिटा खिन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जे सतगुर सिमरंत रिद सिद नव निद पावे सोई रामदास गुर बलपन मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाईया सो सतगुर सिमरो नरो।
3: जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड़ियो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख

जीव अंगद अंग संग नानक गोरे तिव गोरे अमरदास कै गोर रामदास जीव अंगद अंग संग नानक गोरे तिव गोरे अमरदास कै गोर रामदास।

ना जाई सोडी शिष्ट सकल तारन को, अब गुर राम दास को मिली बड़ाई, सोडी शिष्ट सकल तारन को।

0: मोह मल बेवस कियो, काम केस पछाड़ियो, क्रोध खंड प्रचंड, लोभ अपमान से उचाड़ियो, जन्म काल कर जोर, हुकम जो है सो मन्ना, पाव सागर बंदियो, सिख तारे सो प्रसन्न, सेरात पत, सच्चो तखत, जोग भोग संजोत बल, गुरु रामदास सत सल पण, तू अटल राज अपग दल।
1: तू सतगुर चौह जुगी आपे आपे परमेश्वर, सुर नर साधिक सिद्ध सिख से।

इत गुण विसर सिद्ध साधक आर जोगे जंगम पीर पुरुष बहुतेर जे तिन मिला तकीरत आखा ता मन सेव करे कागद लून रह कृत संग पानी कमल रहा

तिन जम किया करै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला पहला। सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी, बाजै लोक सुने पत झोली मंगण कै ताई। भीखिया नाम पढ़े

चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणिया दे माण नेताणिया दे ताण नेउटिया दी ओट धन धन। श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्हां जिन्हां गुरमुखां प्रेमियां वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास। समूह संगत अते टहलियां दी अरदास। सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां। आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है। दर प्रवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवान। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

तरफ है अठ सर तीर्थ जिन हवे उतरे नाही मैं, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते पले संसार, तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार।